मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तार।

मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रघाओ, दीन दयाल हो भोजन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी, संत से नाम मिल सारस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख पुरख मिलया सुख पाया, सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्र स्वामी, रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदे हर घर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, ससृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पो जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पिए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मन श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सदगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी त्रिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आने ता को पेन दिष्टो। कहो नानक कुंभ जल

हा रघाव दुर्लभ जन्म किरण काल पायो जातो कौडी बदलहा काथूरी को गाक आयो लाद्यो कालर बिरख जिवगा आयो लाभ लभन के ताई ऊंठा गौरी से उर्ज पहा काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा आई मस्त जड़वत की न्याई जो तस्कर दर सानेगा आन उपाओ न को सूज हर दासा सरणी पर रखा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरगा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रे

इष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर तोड़ न कथु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कौरी जाए, होत कृपाल दीन दयाल प्रभ जन नानक दास दिसाए।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

छूटते गुर की सुहागन, हर पायो सुगड़ सुजानी। जे कर में बैसन नहीं पावत, सो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल, जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया, तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो, पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद, गुर कृपा ते छूटा रखाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया, अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही, संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया, अमोल लाल आखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी, तौ मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आप मेरो, ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुरपूरे दिया, उरजायो ज्यो जरमीना। रखाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर, ए अर्प

कहो नानक मैं सहज कर पाया अर भगत भंडार खजीना सारग महला पंजवा मोहन सब जीव तेरे तू तार है छुट्टे संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधार है रघाव करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक सा महार है हो कृपाल दीन दुख पंजन हा दे निस्तार क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनू मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुमार है सारग महला पंजवा आप मोहे तन पायो हर नामा पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है त्यो लिखियो लेख मथामा रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा इो जो रो हथ चिरो लाल अगामा आन बापार बंज जो करिए तेते दुग सहामा गोविंद भजन के निरपय वापारी हरास नानक राम नामा सारग महला पंजवा मेरे मन निष्ट लगे प्रे बोला गुर पां पकर प्रसे वालाए सद दयाल हर टोला रघाओ प्रभु तू ठाकुर सरप्रत पालक मुए कलत्तर सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला जे तख्त बसल है तो दास तुम्हारे कस बढ़ावे केतक भोला जन नानक के प्रापुरख विधाते मेरे ठाकुर अगे अतोला सारग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय समावे देख चरत मन मोहं रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रव तोहं केलभ गए मन निर्मल होई गए गुर काढे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रापाया करण कारण समर्थोहं सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा सबहू दूर सबहू ते नेर आगम आगम कटवासा रहाओ अपूल ना भूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन में सा सुवार बिनाहे भगत वशल गुण तासा अंध कूब में दीप बलियो गुरदे कियो परगासा कहो नानक दर्श पेग सुख पाया ता पूर्ण होई आसा सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता हिताइए तेतो ही दुखावा रहाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत तहलावा हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो मस्त पुनीत संत तूरावा सर्बन दान नाम हर हर कहे जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंद बिहावा सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जे माल पिता सु भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप गृह में तिन सिमरे हो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिख अमृत नाम पिया मन तृप्तया आगाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सारग महला पंजवा गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते एते ही गुण गाया निमक न बिशरे कर

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर घर डीठा रघाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कड बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीठा सत संगत की रेन मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाथे निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सुभ

दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रघाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख है हरी रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

तिल ना चोरी, अंधकूप में पतित होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

पंजवा हर घर दियो सेवक को नाम मानस का को बपरो पाई जाको रखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचा आप सेवक कै काम आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पदरा की सेवक की आप कियो बंधान आजुगा सेवक की रख नानक को प्रभ जान सारग मोहल्ला पंजवां।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया। सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद ठांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ। शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रम गिरिया। जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभु जियो, मिले संत जन सेवा। सारग महला पंजवां, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो

साध संगत होवे निर्मल, बौड जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू नितावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सरबल जाओ, सारग महला पनवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुगत पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाम।

पाई गए सुख विश्राम। सोधत सोधत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बेन आवर सगल बिद उरी। सारग महला पंजवा, साचे सदगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नासे, चरण कमल बलिहारा रखाओ सत परमेश्वर सत साध जान, निजर हर का नाओ भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाइए, सगल कटा आधार नानक वाह वाओ, कहो ताको जाका अंत न पार। सारग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे, रगाओ बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे, तो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे।

साध संग जेन हर घर जप्यो नानक सो परवाना सारग मोहल्ला पंजवा हर घर संत जिना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रखाओ संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीमन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन जो मीना जल से उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर्क की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल राख लेहो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल सुख निदान नान प्रभ मेरा साध संग तन माल सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार।

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निविट वर्तन ससदा सुहागन सहज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुमे पिछानू साग तुमे संग राखन हार तुमे जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उधर परमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही तम हो महा अंधार बेट खोरी खाए मुठ कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पर संत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती महा केल रगाओ सुपनरी संसार मिथनी विस्तार सखी काए मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याए अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बो दत करा ओम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रगाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

रगाओ प्रीत लाए हत्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पगराओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोहा एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सार्ग मोहल्ला पंजवा।

काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी। नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हो गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बरन बरन ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौपरी चुनंतकार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही। काज कर्मना जात सही ओ मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास। काट दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सहाई। कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ, तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई, सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही। या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रहाओ, कां को तन तन संपद का की का स्यो नेहो लगाई। जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की शाही, तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुबने पी नाही, सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे। माया माद बिखे रस रचियो आराम सन नहीं आवे रगाओ, यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे। जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे, मितया तान साचो कर मान्यो

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेखे सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपद बीठा रगाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कैन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जन सब पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी तीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रगाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार शोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कड़ कर पूर्ण गए अलपाता कड़ कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग ज्यों रजन किया हाव रसमाने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्श लीना ज्यों

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए।

योगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी, नाय सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाय सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे, नाय सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाय सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे, गुरमति नाव पाईए नानक गुण गावे। श्लोक महला पहला, दुख ज जमन दुख मरण, दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार, दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए। महला पहला, नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे, पसो पस कमावनी पी पस परिये देह, जा जियो विच्चों कड़िये पसु पर आ जाए, अगै लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी, नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। श्लोक महला पहला, कर नारायण सभा नाल

नाय मने सुर उपजे नामे मत होई, नाय मने गुण उच्चरे नामे सुख होई, नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई, नाय मने साराईए पापा मत धोई, नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता जा बूझे ता सूझे सोई, नानक आखे कूक न होई। महला पहला। जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा, हो नाही तू होवे आपे सकता आपे सुरता, सकती जगत परोवे आपे भेजे आपे सदे रचना।

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज।

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत पधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बो प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते पछताया।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसै दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार, महला चौथा नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए।

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुनन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निवर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां बिसासा इस पांडे का, इत लग लागे ठनका, सागल धर्म पुन फल पाव हो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना।

जियां अंदर जियो तुहि गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ही आहिरस नाम जपोरे प्राणी मैले खच्चे हो ही जेही रुत काया सुख तेह तेहो जेही देही नानक रुत सुहावी साई बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त पाए गुरदर्श दिखाया जो जोग भगत सुपावी हम थारे तिर पावन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहोर ना पवजल फेरा आपने पिरघर देख विगासी तौ तन साज सीगारो अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पई बंधन गुर खोले साबद।

मन की विद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जां आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हूं जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द तज साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सब कारे लाए सो सच है या समाई।

प्रसाद यो मन गिर ही के यो मन उदासी के यो मन अवर्णस्त दा अविनाशी के यो मन चंचल के यो मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी। पंडित इस मन का करो विचार और के बोता

सरे सदा अलागर हे निर्वाण तो पंडित दर्ग है परवान सबना में एको एक वखाण है जा एको वेखे ता एको जाने जा को बख्शे मिले सोए ऐथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन विद करे क्या कोए तोई मुक्त जा को कृपा होए आनदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार मोहल्ला तीजा प्राम प्रा जोन मन मुख परमाई जम काल मारे निदपात गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रा मिलिया महल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रखाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उतार भवजर शब्द लंघावन हार दर साचे दिसे सत्यार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम पूले बहु माया होमे ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाह गुर शब्दी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड मध्य किसे बुझाई, आपे बगसे देव डियाई, जो तुर मिलया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका करम कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैल बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उर तार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग शोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए,

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने तरी तब दुर्म

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पू घर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले।

बिन खीरे रह न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे ताको त्रिप्त अगाई। हम बारक पिता प्रवदाता फूले बारक अनक लख बरिया। अन ठौर नाही जय जाता रघाओ चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले माता पिता कंठ लाए रखे। आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी नामृद नाम निदान गृह तेरे मन बांछे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रवचा है मोहे हृदय बसे नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल अरंभ्यो करका ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी और पया मैं प्रेम पेखे। गृह मंगल सोहलावी अरहाओ मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निम पाए जापरे आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पय सुहेले। प्राभ पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पय आनंदा। गुर कार्य हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा। राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निज छोड़ आन को पूजे आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार प्रमे बो जोनी

हम एक गिनत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन दे किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सो पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देव मिलाई। सागल सहेली सुख पर सूती, जे कर लाल बसाई रहाओ। मुई अवगुण प्रसदा दयाला, मुई निर्गुण क्या चतराई। करो बराबर जो प्रे संग राती, ए होमे की टीठाई। पाई निमाणी शरण एकता की, गुर सदगुर पुरख सुखदाई। एक निमुख में मेरा सब दुख काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा, बरस मेघ जी तिल बिन मन लाओ। बरस प्यारे मने सधारे, होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ। हम तेरी तर स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे। स्त्री रूप चेरी की न्याई, तो बनई बिन परतारे। बिनो सुनो जब ठाकुर मेरे, बे गयायो कृपा तारे। कौ नानक मेरो बनयो सुहागो।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाओत पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

तेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने मारे बौर न कतहू ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिलबे की चरण कमल रस पीवन रखाओ।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गामनी नीकी रहाओ तोनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखामनी निकी गिर तार फल जल पावन परपुर काट काट लालन शावनी निकी साध संग रामय्या।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल में

मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पै सज पाया।

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पा गुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ हर अपने भाणे सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने भाणे मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के भाणे सतगुर पेटिया सब जन्म सवारण हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आई है तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास जमकाल सिरो ना उतर अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए मलार महला तीजा अष्टपदी।

पतत तुम तारे। पतत पावन भगत बच्छल किरपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास वर जियो आप लियो सुमारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गए पूजा लेवो नाम देवो तौ प्रसादी मानिए। पज साध संगे एक करंगे किरपाल गोविंद दीना। अनाथ नीच सरनाए नानक करमया अपना कीना। आपस को आप मिलाया भ्रम पंजन घराया। आचर्य स्वामी अंतर जामी मिले गुणित प्यारिया। महा मंगल सुह उपजे गोविंद गुणित सारिया। मिल संग सोहे देख मोहे पुरब लिखिया पाया। बिनवंत नानक सरन तिन की।

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज एना ठगन ठग से जे

भगत छोड है अंध गुरु जिन केरा मासो निमे मासो जमे हम मासे के पांडे ज्ञान त्यान का सूझ नाही चतर कहावे पांडे मास पुराणी मासक तेबी चो जुग मास कमाणा जर काज व्याय सुहावे उथे मास सुमाणा स्त्री पुरख निबजे मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसते नरक जांदे ता उनका दान न लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो एहो तिंघाणा आप ना बूझे लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथो मास उपन्ना तोयो अन्न कमाद कपाहा तोयो तिरपवन गन्ना तोआ आखे खौ बहु बिद खच्छा।

ताल सहे खंड मंडल हैरान तार कोर बाजितर तय साच तख्त सुल्तान सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए अकत कथा बिचारिये मनसा मने सुमाए उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए अजप्पा जापना विसरै आद जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज इहो

अकल मन गोर न माने, मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीवान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

गढ़ वेड़ी, गुर के शब्द लियो गढ़ जी तरहाव, मिथ्या परम परम भो प्रम्या, लुब्धो पुत्र कलत्तर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तोष छाया, फिर मैं बिनस जाए दे पीत, हमरे प्राण प्रीतम जन ऊतम, जिन मिलिया मन होए प्रतीत। परते राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर घर जाए मिले हर प्रीत। हम वो पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर घर नाम दियो मुख औहद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मान, राम नाम जगन्नाथ। घूमन केर परे बिख बिखया, सतगुर काढ़ लिगे दे हाथ रखाओ। स्वामी अपय निरंजन नर हर, तुम राख लियो अंपा पीपाथ। काम क्रोध बिखया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू पर परय परम पर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत संगत मिल साधु पाथ। हर घर कथा सुनी मिल संगत, हर घर जप्यो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभु जगदीश गुसाई, हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभु करो कृपा रखो जन साथ। कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कर टकसाल। हार हो कृपाल रहाओ, तुमरे गुण

आवत जात रहे श्रम नसे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस तानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मेरे संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृता रस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा मोहल्ला पंजवां साजना संत आओ मेरे रहाओ आनदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ चांदना गृह हुए अंधेर संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर कानड़ा मोहल्ला पंजवां चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख ली जे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर

सेवक जो तत योग कौ बेतै रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेतै बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेतै सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेतै कहो नानक जान हर हर हर।

अनक पांद की एक जाली, ताकी गंठ नहीं शोर आए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरण आए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला,

हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सुखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रघाओ जैसी करी प्रा मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलियो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान एकता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यो ज्यो जपे तवे सुख पावे सदगुर सेव समावे गो रहाओ भगत जिना की खिन खिन लोचा।

औरंगी सब एकत बजन चलावै गो, गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो। गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो, जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो। बिन गुर भेटे को मैल न पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलावै गो। सतगुर मिलत महा सुख पाया,

है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रघाओ चलतो चले चले दह दह दिस।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित ते आई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए विकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परम।

पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हार क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिय तिस रूप ना रेखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सतगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सतगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जिन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु जिन को तुर मस्तक लेखिया हर अगम ते आया गुरमति तिस रूप नहीं प्रव रेखिया गुरबजन ते आया जिन्ना अगम हार ते ठाकुर सेव करल एकिया साव कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम रव रहे राम रामो राम रमीत घड़ घड़ आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग

जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रखाओ रसना एक जग गाए न साक बहु कीजे बहु रसन थे बार बार खिन पल सब गावे गुण कह न सके प्रभ तुमन थे हम बो प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे प्रभ दिखन थे।

हर गुण अकथ सुन सही, धर्म अर्थ सब काम ओख है, जन पीछे लग फिर सही रखाओ, सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस बड़ भाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांगे, ते छुटे नाम त्याए सही, हमरे दुख बो जन्म जन्म के, दुख होमे महल लग सही, और तार कृपा हर जल ना आए, सब केल बिख पाप गई, जन के हृदय अंतर प्र स्वामी, जन हर नाम पज थई, जय अंति अवसर आए बंत है, तय राखे नाम सा थई, जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ, हर जप्यो जगन थई, जन नानक के प्रव राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण मोहल्ला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रव जाने, और कोई निंद करे हर जन की, प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने, रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान ने, हर सेवा ते कालज होए ना सक, चरणी आए पवे हर जन, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पैकान, ताको कोई अपर न सक, जा की भगत मेरा प्रमान, हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमक पछाने, ताते जन कौ अंध पया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दाते समरथ स्वामी, एक मांगो तुम पासो हरदाने, जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मुझे हर चिराने, कल्याण मोहल्ला चौथा, प्रभु कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित्यास, प्राप मुहे कब गल लावेंगे, रखाओ हम बारक मुग्ध एयान, पिता समझावेंगे, सोत खिन खिन पूल बेगार, जगत पिद पावेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो, सोई हम पावेंगे, मुहे दूजी ना ही ठाओर, जिस पे हम जावेंगे, जो हर पावे भगत, तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए कृपाल, आप लिवलावेंगे।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिने समान जद कता तद पेखीए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवा गुरनाद तुन आनंद वेद कथत सुनत मुंजना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत ते पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुत सुरत शब्द तत् बेते जब तब अखंडली।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग पुन

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाओ, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नित चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो हुए आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर विधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी,

निराकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहंग गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर सियाण सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशियां की तैवेश जा सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपजे सुखी हो वह दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपजे से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण बेब्रह्मे उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण चित पय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरगे साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई रखाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोड़ पंचासा जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे एते गुण एतिया चंगयाईया दे ना पछोतावे तो सालाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जाके रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले नरन

के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवद की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दुष सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाए।

जात जन मने पूछिए सच कर लिहो बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मुहला पहला जागत बिनसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए, उर्जी ताणी किशना बसाए, जागत

प्रेम परमेश्वर करमी मिले वडाई दिन दिन आवे तिल तिल शीजे माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठोर न पावे जब लग दूजी राई पहन से जिया देख संभाले सुख दो पुरब कमाई करमहीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मष्ट करो मूर्ख जा कहिया अलग बगो तेरी लिबरैया फूल चूक तेरे दरबार ना बिना कैसे आचार ऐसे चूट मुठे संसार निंदक निंदे मुझे प्यारा हरहाओ जि निंदे सोई बिद जाने गुर के शब्दे दर निशाने कारण नाम अंतरगत जाने जिस नु नदर करे सोई बिद जाने मैं मैलो उजल ससोए ऊतम आख न ऊंचा होए मनमुख खूल महाभिख खाए गुरमुख होए सोरा ते नाए अंधो बोलो मुगद गुवार हीनो नीच बुरो बुरियार नी तन को तन नाम प्यार यो तन सार होर विखिया शार उस तो निंदा शब्द विचार जो देवे तिस को जयकार तू बगसे जात पद होए

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, तिस वसे मन आई।

बनाए बहु रंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कड़ कड़ हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़ पू

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, अमरे जग जीवन हर प्राण, हर ऊतम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत मैं हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

अड़सठ मजान सुरमान गुरमुख पावे मान जप मान परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसार हो सेवो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोए न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, जिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे।

अंध सहज रस सूख कनेरे, दुश्मन दुख न आवे नेरे, गुर पूरे अपने कर रखे, हर नाम जपत केलबग सब लाथे, संत साजन सिख पए सुहेले।

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संयम प्रव किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

ताई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने घाट माने पाठ माने गए पासारी माने बसे नाना भेदी परमत गए संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया हरहाओ बावन भीखू बाने भीखे बाजते सुख लागला।

एक जात है बिखिया भी ज्यों बिसार प्राव कहो जसहिए तार नानक जन कै पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महल्ला नामा रे मान कौन गद होए है तेरी ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बेखे सु अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाओ मांस को जन्मलीन।

परम प्रखोतमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चत्र चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर बेण कुंचंते महीपते विपरीत बुद्धिं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं साम

कंद मूलं बसंते समीप केह रहै ततर गते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतः तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है।

नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर हे कामं नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

पाखई एको चेत कवार ताज तेरे आवई हरहा बिन नावे तन शार पिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोरक पीचई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे हरहा हों बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखदिया ए रास वित्याप खलोया जो जो ओना कर्म तो कर्म होए पसरिया हर का दुख रो

काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे हौं बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाहे कबीर इहो तन जाएगा।

कह गए ना कर सके शरीर, क्या जानो किस घर किया भयो कबीर कबीर कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो कह ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक। जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

सिमरन जो कर सो सुखिया संसार। ए त्योत कभे ना डोलई जिस राखे सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिगे छड़ाए। परा पूर्बली पावनी परगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर भजयो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कूकर भौंकना तरंग पिछे उठताए।

से ती दियो गया, सूला से ती रात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंधी के रहेत, बेड़े नू कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी ही, एक टूडें दी नाल हां, तुखां जो माली ही, कारण तिना मापिरी, फरीदा यो तन पौकना नेतने दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पौन, फरीदा रब खजूरी पकियां माखे नई वहन, जो जो वन्ये डीड़ा तो उम्र हथ पवन।

फरीदा महल सखण रह गए वस आया तल गोरा से निमाणिया बैसन रूहा मल आखी सेखा बंदगी चलन अज के कल फरीदा मौते दा बन्ना एवे दिस जो दरिया वे टाहा अगे दोजक तपिया सुनिए फूल पवे काहा एक नानू सब सोजी आई एक फिर देवे परवाह अमल जे कीत्या दुनी वेच से दर...

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूर है ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप की धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभु तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभु सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत कर सत सत सत्य सत पणिए दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दीबान सच सच्चे पै थरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिए ब्रह्मादक संकाद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पावन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बिन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रवेंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर राख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोड़ जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत ना पज नानक राम रंग आत्म स्यों रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान सुदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आपत निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुख बंता साजन सुख बंदप ताश्यो मुह बड़े सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीत औद करत अगना मृत मजार सार मुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न वीरन मीर न खान संग न को दृढ़ निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रा पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जो हुन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुद पाई ताहू तेले रखी नरारी धामन पामन कूर कमावन एवद करत औत तन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरक अस्थावर बोबद जोन प्रम्यो अद पारी खिण पचसा नाम नी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दिलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भगति हर जनता के दर्श समावत जिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोके कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत विष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक
कर कृपा संत आप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इसनान दान तपन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रोतारी। साजन मीत सखा हर बंधप जी तान प्राण आधारी। ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पाप कजरयो ना जात अरयो जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पग। नानक रोग दोख आग मोह छिदे घर नाम खग। उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ। पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बेन घर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत फाटे कर थटुआ। सवाईये महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद। एक मान पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियात। ताज चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मसागर जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मराजन जान्यो। तब कल सुजद गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे जिन काद जुगत जोगेसर हर्ष पूर्ण सर्व कला। गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशरशला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो। काब काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो। गावे जम दगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरे हो। उदो अक्रूर बेदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो। काब काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह मादक सिमरंथ गुना। गावे गुण शेष सहजे बारस आद अंतले लाग तुना। गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो। काब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी। नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आज जिन काद जुग है लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जय कार तुन तब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो। सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेतय तय मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देओ प्रीखित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। काब कलस जस नानक गुर नित नवतन जग शायो। गुण गावे पायाल भगत नागाद पोयंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार। ब्रह्मा गुण उचरे जे हुकुम सब सिट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो। माधाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो। गुण गावे बलराव
ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੜ ਕੜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਤਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਮੁਨ ਬੋਝ ਅਗਾਜ ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਪਤ ਲੀਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੇ ਸਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤੇਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਸ ਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਾਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਨ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦੈਨ ਅਗਪਾ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋ ਮੂਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰਮਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਏ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿੜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਲ ਤਨ ਨਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪੇਖਨ ਤੇ ਕਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਾ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਅਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਖ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਜਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਆੜਸੜ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਖ ਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੇਦ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੇ
सो कहो टल पुर सेवी है अहे निस सहे सुपाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए सवैये महल्ले तीजे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तोई पुरख सेवर सच जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पोबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नखेतर अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव संकाज समुद्रया चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर तलोचर नामा काल कबीर केल बखरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुरमन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तर सख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पख जम तके अथ जित नाम हरदे निवास सुन नल गण गंधर्व छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो तोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम त्यावे देव ते तीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे ते नाम समाध्यो हरक शोक सम कर सगारे नाम श्रोमण सर्वम भगत रहे लिवतार तोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वय लीना ये तीर जो तुर तवल तुजा छेद बैकुंठ बीना परसे संत प्यार ये करता रे संयोग सगुरु सेव सुभ पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर पूजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सदगुर सेवयो जिस पसाए गद अगम जानी कोल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चर गुर परस्यो अमर प्रगास बाज कर दायण सिद्ध सनमुख मुख जो वै हृद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो होरा तिन ही जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सदगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण ता परस के अथ चरण गुर अमर पवल रहे हथ परस के अथ हथ लगे गुर अमर पै जीता परस के अथ जी गुर अमर पणिजे नैन ता परस के अथ नैन गुर अमर पिखिजे श्रवण ता परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिजे सक्यत सो हियो जित ही बसे गुर अमरदास ने जगत पेत सक्यत सो सिर जालब पणे जो सिर नवे गुर अमर नित तेरार दुख न भुख तेरार ने तनो कहिए तेरार सुख न हुए तेरार से अंत न लइए तेरार सेव न करे तेरार से सह सुमपे तेरार दुलीचे बह तेरार उथप बिथप सुख लह तिनार संसार में अपए पट रिप मदते सकिया तिनार जालब पणे गुर अमरदासो प्रसन्न जेह तय पढ़ो एक मन तरयो एक
ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸਮੈ ਲੀਣੋ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਕਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ, ਪੈ ਤੀਸ ਨਾ ਕੀਣੋ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਵ ਪਣੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ, ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸੰਮਾਣੀ, ਜੇ ਮਾਤਰ ਲੋਚਨ ਚਿੱਤ, ਭਗਤ ਕੰਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰਤੂਤ, ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਨਿਰਪਾਈ, ਅਮਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਦ ਪਾਈ, ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ, ਸੁਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਪੋਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਉ ਮੁਕੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਅਪਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕੈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤਉ ਰਹੇ, ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨ ਮੈ ਲਹੈ, ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੈ ਮਿਲੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਤੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਤਾ ਚਰਣੇ ਲਿਵ ਰਹਿਓ, ਤਿਤ ਗੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ, ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਮਣ ਵਖਾਣੋ, ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ, ਤਿਨੇ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਵੇਥੋ ਵਿਧਾਤੇ ਨਿਰਮਾਇਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਧਰਣ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੇ, ਤਰਾਗੇ ਤਰਾਗੇ ਤੋ ਪਾ ਸਰਣ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ।

फुट है। सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिरड़ायो। गुर रामदास कल उचरै तय खर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सदगुर शब्द अथाहो अमे थारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो। आजो नी संभवयो जगत गुर भजन तरायो। अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो। जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण। अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण। सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे। गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे। ते मुक्ते भय सतगुर शब्द

सिद्धर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा।

सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत को धरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लेना ताप जोत जग तारी।

कार तब कार मान गए सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जीओ श्री गुरु श्री गुरु सत जीओ पुर कया मान निज निधान सत जान मंत्र एह निस्बासर होए कल्याण लह परम गत जीओ काम क्रोध लोभ मोह जन जन सुषाड़ तोह होमे का फंद काट साध संग रत

पासा गुरमुख संगत सबे विचार हो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना मन ब्रह्माद क्रुद्राधक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ सतसंगत स्थिति मन खजना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद अज कोई न जाने शिव ब्रंतर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गण समथ तरन तारन प्रसोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त बसै गुरु समरथ गय करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कहो हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कहो मथुरा जन जान कई जी साच तो और कछु ना विचारन कहो हर ना भूत बड़ो कल मैं अवसागर पार उतारन कहो संत की सत्संगत संग

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगासे। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुर।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मै जो स्वरूपी रहो पर पान मसरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जा संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

कंप काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग पूला दैत न समझई इन पव की ये काम नानक वे प्रभु।

ना पदार्थ पाया अटुट परे भंडार, हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गलिया ए पाए, एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए, बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए, मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई, जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए नौ से मन आई। नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई, मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, होमे अंतर मैल है शब्द न काढ़े धोए। नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए, मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विश्वास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा हो सब बलगारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास, माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखमाए। देखा मारण हर नाम है गुर गारड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए। मिल सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है निद हिरदे घर लिवलाए। निर्वैरे नाल वैर रचाएगा अपने कर लू की लाए, अंतर क्रोध अंकार है अनदिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल निद पौक दे बिख खादे दूजे पाए, बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए। बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तुझ जाए, हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए। हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से ऊबर बिन नावे जमपुर जावे, नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे। चिंता ताप तरे गए तामन पया आनंद, गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद। जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार, सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार। ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार, जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार। नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार, जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ। गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह सुमाओ, वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ। जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सत कुरबाने जाओ, लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार। यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार, बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार।
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲਵਟਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ, ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥੈ ਵਡਭਾਗੀ ਚੜੇ,

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस जू

सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा चे पवे, वेद पढ़े जुग चार, नानक साचा पेटे हर मन वसे, पावे मोख द्वार, नानक हुकुम वरते खसम का, मद पवी फिरे चल चित, मानमुख सौ कर दोस्ती, सुख के पुछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती, सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटिए, ता सुख हो भी मित, भुलिया आप समझाए सी, जा को नदर करे।

त्यों सज्जन मिले प्यारिया, हौं टूढ़िंदी तेन सज्जन सच सवारिया, सतगुर मैंडा मित है जे मिले ता इउ मनवारिया, देंदा मुंह पिर दस हर सज्जन सिरजन हारिया, नानक हौं पिर पाली अपना सतगुर नाल दिखा लिया, हौं खड़ी निहाली पंध मत मुंह सज्जन।

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना पिरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एव मन रहसी है, जिन्ना पिरी प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख

वे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गाव है पांचो संग बरंगन लाभ है बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पछे सिंधवी अलापी श्री राग सो पांचो थापी।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

एते कीते होर करे हे ताख न सकै के ही के जेवड़ पावै ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिए सिरगा वारांगा वार सो दर कहा सो कर कहा जित पै सर्ब समाले वाजे नादा नेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि सो कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंद आसन बैठे देवत्या दर नाले गाव है सिर समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पन्न रखी सर जो युग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसर तीर्थ नाले गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना यावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदासा साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरन पर झोली ध्यान की करै बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश उतसै आदेश आदा नीला नादा नाहत जुजगु एको वेस पोत गया दया भंडारण कड़कड़ वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्धवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावै लिखे आवै भाग वादेश उतसै आदेश आदा नीला नादा नाथ जुजगु एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी

तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नदर कर्म।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे भावै सोई वरतै जी, तू वापे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

कह कट नाम निवास, जित बोलिया पत पाई है, सो बोलिया परवान, फिका बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान, जो तिस भावै से भले होर के कहन वखाण, तिन मत तिन पत तिन धन पल्लै, जिन हिरदै रया समाए, तिनका क्या सालाहना अवर सवाल्यो काए, नानक नदरी बाहरे राचै दान ना नाए, श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़का, दिता देवन हार मत्ती मरण मिसारिया, खुशी कीती दिन चार, सच मिलिया तिन सोफिया राखण कौ दरबार, नानक साचे कौ सच जान, जित सेवया सुख पाई है, तेरी दरगह चलै मान, रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस वे सच्चा नाओ, सुने मखाने जितड़े हों तिल बहार जाओ, ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाओ, नाओ नीर चंगियाईया सत परमल तनवास, ता मुख होवे उजला लख दाती एक दात, दुख तिसै पै आखिए सुख।

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजिय नाउ मनिय, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइय ता जियो केहा होए, जलिया सब सियाणपां उठी चलिया रोए। नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो पैने गल मिले है अंक सहे लिड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी, केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जय उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए रहाओ, केता आखण आखिए आखण तोट ना होए। मंगण वाले केतड़े दाता को सोए, जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईए मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईए दर कर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए, क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिले सुख होए। निज कर महल पछाणीए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतर है बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते आस, नानक देख दिखाई है हो सतबलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठिए पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ, आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान। पहला तरती साध कै सच नाम दे दान,

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जी

चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमान कमोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघीऐ दरगै पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

तू है कविया तू है आपे वेख विगस। श्री राग महला पहला कर तीजा एहो तन धरती बीज कर्मा करो सलल आ पाओ सारंग पाणी मन किसान हरदय जमाए लै इओ पावस पद निर्बाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पित सुतो सगल कल तर माता तेरे होहे न अंत सिखाया रहाओ बिखै बिकार दुष्ट किर का खरे इन तज आत्मा होए ते आई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिकसै मध्य सुरमाई बी सप्ताह रो बसरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार दस अठार मैं परम प्रोचीन कह नानक इव एक तार। श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आप नित देहे पानी हुए किसान ईमान जमाए लै पिस्त दोजक मूड़े एव जानी मत जान सह गली पाया माल कै मान रूप की शोभा इत बिधि जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो एहो मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई पावर उस्ताद नित पाख्या बोले क्यों बूझे जाने बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी एहो मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिन्नी कर एक ते आया तीही कर राखे पंज कर साथी नाओ सैतान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल तन कित कु संजियाही। श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला

काम क्रोतन वसै चंडाल धन क्रूपरा करतार फाही सुरतम लुकी वेस हौ ठगवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगार सुख वसै, जो तिस पावै सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दुई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनगन दुख विहानी, मनमुख अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए, जप जत सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंत ना आवई, नित नित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पा।

किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए नामै ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए मन मेरे आन दिन जाग हर चेत अपनी

में अगली। मनुआ रजा सह सुभाए, गुर का शब्द अमृत है, जित पीता तिख जाए, एहो मन साचा सच रता, सचे रया सुमाए।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणीए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार। गुर शब्दी सलाहीऐ हमै विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगणवंती रोए। सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए। आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुरसा लाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

पूरै पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिन को नजर करे खसम पछाणा अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हमें दूर करे नानक सो बावंतियां सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे अपना हाँ कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देह मिलाए सब पाए आपे वेखे किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहारै जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सब के तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जी ओ बख्से बख्स लय सुख सदा शरीर गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमती नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजै पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तासमान जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करै धन सवारन हार मन के बेकार मने तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाई है मन मुख फिरै दीवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिखिया माहे समान सब कछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बुलाए त्यों बोलिए जाय आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द में लावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवै सुख होए श्री राग महला तीजा जग हों मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजै पाए मल हों मैं धोती किवै न उतरै जे सौ तीर्थ नाए बहुविध कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पढ़िया मैल न उतरै पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मल हों मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीप

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए नानक सच्चै पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हो।

विसर ना जाओ, तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ, आसा सबे लाहे कै इक आस कमाओ, जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ, मन मेरे करते नू सलाहे, सबे छड सियाणपा गुर की पैरी पाहे रहाओ, दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए, किथी कम न छिजिए जा हृदय सच्चा सोए, जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए, सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डे धोए, सेवा मंगे सेव को लाइया अपनी सेव, साधु संग मसकते तूठे पावा देव, सब किश वसगत साहेब आपे करन करेव, सतगुर कै बलिहार नै मनसा सब पूरेव, इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत, इक सह दी सामग्री इक सह दी है रीत, इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचरचीत, सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत, श्री राग महला पंजवां, सबे थोक प्राप्ते जे आवै इक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवै मथ, मेरे मन एक सस्यों चित लाए, एक बिन सब धंद है सामिथ्या मोह माए रहाओ, लख खुशियां पात साहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, जिस तौ पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए, सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार, बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार।

जैन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्द सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुरप्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले।

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कूकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

सौसे तू सावरड सुख वस गुरमिल चाजिया चार सिख तुद कदे न लगे दुख सबना साहुरै वंजना सब मुकलावन हार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार श्री

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुरो सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कश नजर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया श्री राग महला पंजवा कर सतवा तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू हर पिता माया सुहेला कहन कहावनों तेरा बिखम भावनों रहाओ।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आ

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वेस रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई, यहां किसनों पुछन जाओ। वरना वर्ण ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्ररावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरे ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी तन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत नारावीया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथा आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे त्यों राख तू हर नाम मिले।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सोसार केते पंडित ज्योत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुख होए अवगण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशी वापारिया तके कुंडा चार मूल न बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वण जारिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नाम पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दा कर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन

संत सभा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणै रव रहै ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिया कथन ना पाया जाए वा पारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइय रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाइय सर प्यार मुक्त पदार्थ पाइय अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वख सुनाए, गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटुंब मोहे लोभाना, चलदिया नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई, पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई, हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई, पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौ मैं मोह चुकाया, जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार, सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उरतार, प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया, हम सतबल हारै जाओ, अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई, हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई, श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमावंदे, जम डंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करते लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ, विण सतगुर परतीत ना आवई, नाम ना लागाओ पाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्याप्त है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज पैर प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मन

चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्लै पाए, निर्गुण नाम निदान है सहजे सोजी होए, गुणवंती सालाहया सच्चे सच्ची सोए, पुल्या सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए, बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार, सहजे ही सोजी पई सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार, सबना जिया कायक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार, पूरे शब्द सलाही है जिसदा अंत ना पारावार, ज्ञानियां का

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता निचल होवे राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु बिदी, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगी आ, तू भोगी अंदर भोगी आ, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, हौं वारी हौं वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीताया अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाजना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले है परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिर निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तने अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे कार रसाया, तन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता है आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत तरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेव की पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, मेरे गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ अपना बिरस मारिया, कंठ लाए कह रखे होन, लगे ना तत्ती वाओ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छियाड़ा फल पाया, साहा पात साहा सिर खसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुद आपे आपो पाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वरतदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी, आपे लय समाए जियो, गोपी ने गोवालिया, तुद आपे गोए उठा लिया, हुक्मी पांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर सिउ चित लाया, तिन्नी दूजा भाव चुकाया, निर्मल जोत दिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगियाईया, मैं रात है वड़ियाईया, अनमंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवां,
ਪੈ ਪਾਏ ਮਨਾਈ ਸੋਏ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਹ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਗੋਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇੱਠੜਾ, ਆਮ ਅੱਬੇ ਥਾਓ ਮਿੱਠੜਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾ ਹਰ ਜੋ ਆਇਆ, ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਰ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ। ਹਉ ਗੁਰਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੁਆ ਕਾਗਲ ਚਿਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਨਿਭਾਏ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ

हाथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेता चेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया।

तन जो बन सो चित हरका नाम ना चित ही बन जा रहा। मित्रा बद्दा छुट्टै जित हरका नाम ना चित प्राणी बिकल भया संग माया। तन स्यों रता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक तीजै पहरै प्राणी। तन जोबन स्यों चित चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा। मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा। मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जा जम पकड़ चलाया। झूठा रुकन हुआ दुआले खिन मैं पया पराया। साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी। चौथे पहरे लावी लुनिया खेत

मात्र पिता सुत ने हुकनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समा

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै नानके स्वामी धारा अनुग्रह मंत्र अंक समावै डखणा सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पया पार संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म नहारी है नानक की बेनंती प्रप है कृपा कर पव जल तारी है डखना तूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन मालो शंत सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखे बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ही के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निचल मत अपार। रतने मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल इक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजे आ वापार करीवे।

सरै सरैयत करै विचार बिन बूझे कैसे पावै पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुर तां मिलै जामन रहै हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना वे तू वरदा हर सबना पाणा सब तुझै ते आवै जी जंत हर सारंग पाणा जो गुरमुख हरिया राज दे तिन्हौ कुरबाणा तू आपे आ वरदा कर चोज वडाणा श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या

जाय सी जो तुर छोड़ी सचै पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल न चलई वेखो को वे उपाय सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सबदी सच है करमी पल्लै पाए पौड़ी।

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नामै अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखनी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौपे कंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नामे कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्त, जिन गरीब अनाथ राख लियोए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियोए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया कर अपना, पर पुरखै नाल प्यार। तृष्णा कदे न चुके, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै क्रूप सोहणी, पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा। शब्द रती सोहागणी, सतगुर कै पाए प्यार। सदा रावे प्रे अपना, सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी, शोभावंती नार। नानक नाम सोहागणी, मेली मिलन हार। पौड़ी। हर तेरी सब करै उस्त, तो जिन फाथे काढ़िया। हर तुदनो करै सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। हर ने माणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए, मनमुख मूड साध्या। हर भगता दे वड्याई, गरीब अनाथया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मिट न सकै कोए। कृपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है, गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिने अगै कमावे कार। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया, तिन पाया मुख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या, तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया, गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी। हर की भगता प्रतीत, हर सब के जानदा। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय, जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ, पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा, यंत्र रखा और तार। साला ही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे, तिस मेल लए। साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नजर करे। मानस ते देवते पए, तया नाम हरे। हम मैं मार मिलायन, गुर कै सब तरे। नानक सह समायन, हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी। हरे अपनी भगत कराए, वड्याई वे खालियन। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेव कालियन। हर भगता नो दे आनंद, थिर करी बहालियन। पापिया नो ना दे थिर रहन, चुन नरक कोर चालियन। हर भगता नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला।
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੰਡੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋਟ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆ ਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ

गुरप्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा, नानक एको नाम वरतै सब अंतर। गुरप्रसादी पावणिया माज महला तीजा, वर्ण रूप वरतै सब तेरे, मर मर जमै फेर पवै कनेरे। तू एको नेह चलो अगमया पारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हाउ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावणिया, जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई, गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा, लोभ अवमान बहुत हंकारा, मर मर जन्मै पत गवाए अपनी, बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै, आप मारे तांत्र पवन सूजै, फिर ओ मरै ना मरना होवै, सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए, गुर कै शब्द सदरै समाए, सच सा लाहे सब घट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे, गुर कै शब्द रहया परपूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवै, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए, सदा सच निह चलो आवै ना जाए, सच्चे लागै सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सा लाही अवर ना कोई, जित सेवै सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत समहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाउ वारी जियो वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सा लाही, शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मुवा तिथै मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हमै मैल गुर शब्दे तोवै, निर्मल वाजै अनहतुन बाणी, दर सच्चै सो बा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे वडपागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहै, सच नाम मल कदे ना लागै, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजै पाए, मैला चौका मैला थाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मनमुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे पाए, नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, या तूजल नाम ते आवणिया। हाउ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। रहाओ गोविंद गावै सहज सुभाए, गुर कै पै उजल हम मैं मल जाए, सदा आनंद रहै भगत करहै दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचै भगत दरड़ाए, गुर कै शब्द मनै मन

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावण्या। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजे पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावणिया। माझ महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, सोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, से भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सालाहे, साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मिलावणिया। माझ महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रह दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत्या मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

तू आपे दुख सुख देवै करते गुरमुख हर दे खावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजय अमृत बाणी गुरमुख आख सुनावणिया आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राखे आपे दे गुरमुख बन जै के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरहु मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देश जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़ पर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पर राख्या कंठ लाए शब्दे पर रा वैसे सुहावने आ। आपे देवै सद बुलाए अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिले वडियाई अंदन सदा गुण गावणे आ। माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा। हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणे आ। हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावने आ। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ अलख अपेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावने आ। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रिबद माया कारण लूजे। त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल

हाँ हाँ करे तय आप जनाए, बहु कर्म करे एक स्थाए न पाए। तो इते बाहर किशु ना होवे, बक्से शब्द सुहावणिया। उपजे पचे हर बुझे नाही, अंदन दूजे पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछा।

ते सरूप ना रेखिया कड़ कड़ देखिया गुरमुख अलख लखावणिया रहाओ तू दयाल किरपाल प्रभ सोई तुद बिन दूजा अवर ना कोई गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया तू आपे सच्चा सिरजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सह समाद लगावणिया आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुसा लाही प्रीतम मेरे तुद बिन अवर ना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया आगमया गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करै तू लह मिलाई पूरे गुर कै शब्द तिहाई है शब्द सेव सुख पावणिया रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे पावै गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावणिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुवै जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गोबारा फिर आवण जावण आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिख तुर पाई नानक नाम मिले पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावणे माज महला पंजवा घर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया आगमै गोचर सब ते उचा गुर कै शब्द लिखावणे हाँ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावने आ संत प्यारे सच्चे तारे वड भागी दर्शन पावने आ रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिर दे ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे कोट तीसा खोजै ता कहो गुरमिल हिरदय गावने आ आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरना खानी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से तृपता से सच्चे साचा गावणिया तिस घर सहजा सोई सोहेला आनंद विनोद करे सदकेला सो धनवंत।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात कर मैं तुम ही पाला माया गन्ना पोह तिन कौ रंग रते गुण गावने आ क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने आ जिस कहो तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब सरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटावने आ तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावने आ माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दै समाली है मूला मनो विसारी है रहाओ संता संगत पाई है जे जमकै पंथ ना जाई है तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरन दे साई है नरक ना सही पाई है तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया है जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सही गंभीरिया पार जियो हर अम्यो रसायन पीवी है मोह डिठै जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर हो वा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्मया पार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगर मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेविया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जप पई ठरूरे करते कियत पाप सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर

किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी कितै न आवै काम। जल बिन साह कुमलावती उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जलथल महियल पूरिया रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो। एक सहर के नाम बिनु अगे लइए खोहे। दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटै हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवन। हर सज्जन दावन लगिया किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके पाग मथन। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास। दुया पाए विगुचिया गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास। रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगै होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार। हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार। नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागन।

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस भावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र ने अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कह सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हर ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानकेहो सुवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

मुंडम डिठ मैं नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या कम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वट पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए।

पाए पौड़ी, एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा, एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा, वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा, जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा, गुरमति काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा। सलोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े जमा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाए का दिल हच्छे मुख ले हो, अवर दिवा जे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला, जा हो नाही ता क्या खा, क्यों नाही क्या होवा, कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा, आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गुहोवा, नानक अंदा होए कै दसे राह है सब समुहाए साथ है, अगे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा या गूजा पै पौड़ी, महारुति सब तू कड़ी मूर्त विचारा, तू करते कने ना पायो सच्चे लख्या पारा, पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लब लोग अहंकारा, ना पढ़िए ना बुझिए गुरमति विचारा, गुरमति नाम तन खटिया भक्ति परे भंडारा, निर्मल नाम मनिया दर सच्चे सचियारा, जिसदा जियो प्राण है अंतर ज्योतिया पारा, सच्चा साहो एक तू होर जगत मनजारा। सलोक महला पहला, मेहर मसीत सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान, सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान, करनी का बासच पीर कलमा कर्म नमाज, तस्बी सात इस पावसी नारक रखे लाज। महला पहला, हक प्राया नानका उस गाए, गुर पीर हमा ता परे जा मुरदार ना खाए, गली पिस ना जाइए छुट्टे सच कमाए।

क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली, कीजे भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिए चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताखती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइय तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिय दिचै अगजा लाए, नानक मिठै पतरिया वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामन कर मन लए सहा संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाण है पितर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओहो ना मुआ जो रया समाए कहो नानक गुर

तू दाना बिना साचा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर कै शब्द पिछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथा आकार तीन अवस्था कह वखियान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कह हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा महे निरास बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेत

लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया। हालत ना सोबा, पलत ना टोई।

जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाण सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा अग्न महला पहला रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम ना जानिया राम का मूड़े फिर पाचा पिछता है रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा उपर निबड़े जे लुचे सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। मैं बनजार नराम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाई मेरा सहो मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उर्वार पार मेरा सहो बसे हो मिलोगी बहां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागणी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपाव का सोहेला हों वारी जाओ जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखे गा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हुए सैब स्यो मेल। कार कार एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभ सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पैराचे सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए शब्द सला है अंत ना पारा वार मेरा प्रभ बख्से बख्शन हार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते सच।

ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हाँ मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे। मन तन राता नाम सुहावे रहाओ। एक गावे एक भगत करे, नाम ना पावे बिन असने। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे दे वड्याई, गुरप्रसाद हर वसै मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मै मत मैंगल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवाल नहारा। मन या साध साधे जन कोए, अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, हम मैं विच सब जग बौराना। दूजे पाए परम पुलाना, बहु चिंता चितवै आप ना पछाना। तंदा करत्या अंधन विहाना, हिरदय राम रमो मेरे पाई। गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जग चारे जाता। हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म विधाता। से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, तावत वर जे ठाक रहाए। नाम नामृत गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसै मन आए। आराम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै ना लागे जम पीर। आपे साहेब आप वजीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सो क्यों विसरै जिसके जी पराना। सो क्यों विसरै समय समाना, जित सेवै दरगै पथ परवाना। हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरै तद ही मर जाओ रहाओ। तिन तू विसरै जे तुद आप भुलाए, तिन तू विसरै जे दूजे पाए। मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए। जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए, गुरमती हर नाम समाए। जिन्ना पोतै पुन से ज्ञान बिचारी, जिन्ना पोतै पुन तिन हम मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाहे। गुर शब्द मारन मन माए समाहे। तेरे गुणा ने कीमत नहीं पाए, जिसकी बाणी तिस माहे समाणी। तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहाओ। जय सतगुरु।

कहां गुप्त प्रगट प्रबणत बनाई। आपे सुत्यां दे जगाई तिसकी कीमत कने ना होई। कह कह कथन कह सब कोई। गुर शब्द समावै बूझै हर सोई। सुन सुन वेखै शब्द मिलाए। वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए। नानक नाम रते हर नाम समाए। गौड़ी गुआरे री महला तीजा। मन मुखसूता माया मोहे प्यार। गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार। सहजन जागे जिन नाम प्यार। सहजे जागे सवै ना कोए। पूरे गुरते बूझै जन कोए रहाओ। असंता नाड़ी कदे न बूझै। कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै। इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाए गुर शब्द विचारा। आप तरह सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई। कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। गौड़ी महला तीजा अंगवारे री। सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो। मन साचे राते हरवे प्रवाह हो। सच्चे महल सच नाम समा हो। सुन मन मेरे शब्द।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरुख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान

सोई पर जाने। जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत् तत् सो मिलिया, पुंडप जन्म न आही। गौड़ी बैरागण महला तीजा।

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पगतूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

ज्यों जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाट दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा। मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया, जानकी उपमा तुझे वडैया, रहाओ मंदर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै, हर जन परिवार सधार है, एक ही कुली सब जगत छुड़ावै, जो किश किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाईदा, आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम, काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है, हर की वड़ियाई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छिड़ाए, मैं मूर्ख की गत की जय, मेरे राम गुर सतगुर सेवा, हर लाए हम काम, रहाओ लै तुरे सौदागरी, सौदागर तावै, तन खट्टै आसा करै, माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया, बै हट कमाए, मोह झूठ पसारा झूठका, झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया, हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटंब है, पाए दूजै फास, गुरमती सोच

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

मन अन रस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहलै बोलै गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन कौ पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदी ए सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बार को हर प्रभ की है आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखै रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करै, हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुरपुरा क्यों मिले रहाओ। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा, इश्पुनी जन केरिया, ले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावै, हर भगत सुनै, ते सतगुर मिलिया, टोटा मूल ना आवई, हर लाभ ने दृढ़िया, जिसको हृदय विगास है, पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरै, हर गुण गा वाही, महला चौथा गौड़ी पूर्वी। हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंतन मुख हर बोली, गुरमुख रंग पया तगूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर से ती मन मान्या, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ। करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब ज्योत सबाई, हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख्या तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपुरै, सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन तन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से,
जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते। दुरमत महल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर तुम जे वडे अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिय हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते। मेरा मन हर सेती रचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे। राम मेरा मंतन बेद लियो हर साचे जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया। गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते सागत मूड नर काचे। तिनको जन्म मरने अत भारी विचविष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे करनाचे। आपे सह वड्डे प्रस्वामी हमन जारे हैं ताचे। मेरा मंत्र जियो राज सब तेरी जन नानके सह प्रभ साचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने। जिसते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राने। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अन रस हम देखे सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया मेरे सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते सागद मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो किथे हर पौ नसी है हर आपे बगसले प्रभ साचा। हर आप छाए छुट्टी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाओ। मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता जित सेवे नि कर वसीय। गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीय। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लहा हर मन हसीय। हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखीय। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटी है। ते सागत चोर जिन्ना नाम विसारिया मन तिनकै निकट न पिटी है। मेरे मन सेवो लख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटी है। जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै। मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो। मेरा मंतन लोच कनेरी राम मेरा मंतन लोच मिलन हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ। जो हमरै मन चित है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी। आन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाता पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी। आन दिन अंध भया वडभागी सब आस पुजी जन केरी। जगनाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुमा खिन ना टिकै बहु रंगी। दह दह दिस चल चल हांडे
ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਂਡੇ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਡੇ, ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਮਸਤਕ ਦਾ ਦੁਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਡੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਪੌਦੁੱਤਰ ਤਾਰ ਪਰਾਂਡੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਂਢਣ ਗਾਂਡੇ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਗਲਾਡੇ, ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਆਗੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਂਡੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਹੁਮ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਗੜ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ, ਹਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਗਰੋ ਕੀਆ, ਹਰ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਚਖ ਡੀਠਾ, ਰਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਲੇ ਮੀਠਾ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਲਾਗ ਬਸੀਠਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈ, ਤਿਨ ਆਗੈ ਅਣ ਪਰੀਠਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਅਰਾ ਅਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤਿਨ ਅੰਤਰਕਾਰ ਕਰੀਠਾ, ਬਿਸੀਅਰ ਕਹੋ ਬਹੁ ਦੂਧ ਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਖ ਨਿਕਸੈ ਫੁੱਲ ਫੁਲੀਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਕਸ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੇਚਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਭਾਗੇ, ਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਹਾਓ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਹਉ ਮੰਤਨ ਦੇਵੋ ਘਟ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਾਗੇ, ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਆਨ ਜਲਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਿਓ, ਘਰ ਵਸਤ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਸਾਕਿਤ ਬੰਧਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਓਏ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਭਾਗੇ, ਹਮਰਾ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਮੰਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜਪਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਹਮ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਰਹਾਓ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਰਾਏ ਕੀ, ਗੁਰਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਭਇਆ ਮਨ ਮੋਰੈ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪ ਵਿਚਾਇਆ, ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਕਰ ਦੁਸ਼ਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ, ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤ ਆਏ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮਤ ਬਾਜੈ ਸਬਦਾ ਨਾਹਦ, ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਗਾਵੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਤਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਰਹਾਉ ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਕਮਾਵੈ, ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਤੋਵੈ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ,
जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रस आगाने फिर बहुर ना भूख लगावै कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम ना पावै जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगण सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठे टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जियो एक खावे बख्श तोट ना आवे एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हां तुद विटड़ियो सदवारी जियो मेरा मंत्र प्रेम प्रम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਬਾਰੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨੋ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਸੁਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਉ, ਆਪੇ ਜਗਤੋਂ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਖੇਲੈ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੀਉ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਗਨ

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पर उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवे बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर हमरी भूम कौन का लै पैर। हाँ पंडित हो चदर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करना हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु से आण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगह शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे न लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै गहे उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै तिसकै पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

रैन दिन सो रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार, एको बनजु एको ब्योहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

मैं मारी सतगुर संग नाही मंडोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै, सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद, कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, सा संग जपयो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुरपैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ, सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान, दुख दर्द बिनसे पै भरम, आवन जान रखे कर करम, पेखे बोले सुने सब आप, सदा संग ताको मन जाप, संत प्रसाद भयो प्रगास, पूर रहे कै गुणतास, कहत पवित्र सुनत पुनीत, गुण गोविंद गावे नित नीत, कहो नानक जा को हो कृपाल, ते जन कीसा पूर्ण काल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बंधन तोड़ बोला वै राम, मन में लागै साहि ध्यान, मिटै कले सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुर कही है, सो सुखदाता जे नाम जपावै, कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ, जिस होए दयाल तिस्या मिलावै, सर्वनिदान गुरु ते पावै, आप त्याग मिटै आवन जाना, साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा, जानी उपर प्रभ पै दयाल, जन की टेके गोपाल, एका लेवे को मन पाओ, सर्वनिदान जन कै हर नाओ, पार ब्रह्म सिउ लागी प्रीत, निर्मल करनी साची रीत, गुरपुरै मेटिया दिहारा, नानका प्रभ अपरिया पारा, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, जिस मन वसै तरै जन सोए, जा कै कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै, अमृत नाम हृदय हर जापै, पार ब्रह्म परमेसर त्याई है, गुरपुरै ते ए मत पाई है, रहाओ करण करावन हार दयाल, जी जंत सगले प्रतपाल, अगमा गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्वनिधान, प्रभ की पूजा पाई है मान, जाकी टहल न बिरथी जाए, सदा सदा हर के गुण गाए, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निधान हर लख स्वामी, जी जन तेरी सरनाई, नानक नाम मिले वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, जी जुगत जाकै है हाथ, सो सिवरो अनाथ को नाथ, प्रभ चित आए सब दुख जाए, पैसा बिन सहर कह नाए, बिन हर पौ काहे का मानै, हर बिसर तो काहे सुख जानै रहाओ, जिन तारे बहु तरण्या गास, जाकी जोत जी प्रगास, जाकी बख्शना मेटै कोए, सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए, आठ पहर सिमरो प्रभ नाम, अनक तीर्थ मजन इशनान, पार ब्रह्म की सरनी पाहे, कोट कलंक खिरमै

उतना जो है। माया मगन कछु है मोह है, उधरे आपतर है संसार, राम नाम जप एकंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथा हो निदान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, चौपदे दुपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जो प्रायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना, कहो गुसाई मिली है के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना, दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवां, कल युग में मिले आए।

अंतः महाराज अंतर्जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जाके हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जाको तुम दीनी प्रभ धीर, ताके निकटण आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मरना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमहे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहा कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी

हर कै मार्ग पतत पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हारो सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार दृष्टिया वै सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नामृत लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगासै हर सिमरत त्रा सबनासै सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ। साध संग पाइए निदनामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत।

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार, सो चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला।

आहे नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारा राखै एको सोए रहाओ, गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार, गुर मूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान, सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया, गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख, रव रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानके अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम आधारा, पौ ना व्यापै तेरी सरना, जो तुद पावै सोई करना, रहाओ सोग अर्ख मैं आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा, अग्न सागर महाव्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, राख ले प्रभ रखण हारा, कहो नानक्या जंत विचारा, गौड़ी महला पंजवां, तुमरी कृपा ते जपिए नाम, तुमरी कृपा ते दरगै था, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए, रहाओ तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते परम पौ भागै, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतरजामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवां, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी, रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून कहां सोहाग, नाम बिसार लगै अनसवाए, ताकि आसना पूजै काए, कर कृपा प्रभ अपनी दात, नानक नाम जपै दिन रात, गौड़ी महला पंजवा, तू समरथ तू है मेरा स्वामी, सब किश तुम ते तू अंतरजामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उधरै जन कोट, रहाओ जेते जी ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सूख नेरे, जो किश वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रभदान, नानक सिमरै नाम निधान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जां की राम नाम लिव लागी, जां कै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही, रहाओ सर्व निधान राखे जन माहे, ताकै संग किलविख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै, दास की तूर नानक कहो दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसै मन आए, पज मन मेरे को नाम, जी तेरे कह आवै काम, रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुर पूरे का निर्मल मंता, छोड़ उपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौन दर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सदगुर मिल लिस्ता।

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जसपी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्याग। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन्म।

साधु संग करो सबको, ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाकै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रवरदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ मना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समर्थ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर

पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ, अहम बुद्ध मन पूर्थ दाई, साध तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वह देही, मैल ना उतर सुध ना देही, सतगुर भेटियो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पहु काल, मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ, गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया तुम प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार पुरानी, रहाओ आठ पहर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा, साध पई गुरु गोविंद पाई, ता पाप बिन से मेरे पाई, रहाओ राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओ मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ। तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया किरपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवे हथ दाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगे प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे काज सुवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बाद सा सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै। हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता। हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस। हर संगराते दुख ना लागे, हर संगराता अंदन जागे। हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौन सै। हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रम मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दो गए। नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाय गोपाल। पाप मिटाए साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने।
आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक प्रभ कृपा तारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ।

या दीनानाथ अनाथ करना मैं साजन मीत पिता मैं तरिया चरण कवल हृदय गह नानक भय सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद दै गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुखदात्या निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्तो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सदी दीन दयाल क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार शरण समाई दास हित ऊचे अगमे अपार सगल पदार्थ अहट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा से जन हर गुण गाहे मात पिता सुतबंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिखतर या संसार गौड़ी बैरागण रहोए के शंत के घर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावै सर्व कल्याण सुख सच पावै रहाओ बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया सेवट भागी ब्रह्मादक सनकाद पिचा है जोगी जति सिद्ध हरिया है जिसे प्राप्त सो हर गुणगा है ताकि सरण जिन बिसरत नाही वड़ भागी हर संत मिला।

दास दासन की अनक पांतिस करो नेहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म करतार।

खेद करे यार बहुत संताव आयो शरण तुहारे कर कर हारे अनक बहु पांति छोड़े कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते तीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत लै ओए महा बेखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया निरपो संग तुम्हारे बसते एहो डरन कहां ते आया रहाओ एक महल तू हो अफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू प्रणत बगता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल कशु ना लेता काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने जैसा पिख करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजियाने अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे विचारा जिन किश किया सोई जाने जिन ए सब साजी कहो नानक परंपर स्वामी कीमत अपने काजी गौड़ी महला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ उर्ज रे ओरे बावर गावर जो किरखे हरे आयो पसुआ रहाओ जो जाने तू अपने का जय सो संग न चाले तेरे तसुआ ना गोवायो नांग सिदासी फेर फिरे वार काल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिनहू लव हसुआ शीजित डोर दिन सर रैनी जी को काजना कीनो कछुआ करत करत इवी ही बिरधानो हार्यो उगते तनखी नसुआ ज्यो मोयो उन मोनी बाला उसते कटे नाही रुचसुआ जग ऐसा मोय गुरे दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन

पाए मेरे ठाकर अगर अतुले, वर्ण ना साकाऊ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते, भ्रम पौ काट किए नह केवल जबते हम मारी, जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी, चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया, जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ, सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही, पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही, गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ, अनक जन्म बजोनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श हर राया, सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्हीं कीता, तुमरै पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछ कर कृपा, तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै,

जो प्रभ करै सोई पल मानो, सुख दुख ओही त्याई रे। कोट पत तो उधारे खिन मैं, करते बार ना लागे रे। दीन दर्द दुख पंजन स्वामी, जिस पावै तसै निवाजै रे। सब को मात पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे। देन दे तोट नाही तस करते, पूर रहे रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, घट घट अंतर सोई रे। नानक दास ताकी सरनाई, जाते बिरथा नाम कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबू न मनो बिसारे, इहा उहा सर्ब सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे रहाओ। महाकष्ट काटै खिन पीतर, रसना नाम चितारे। शीतल सांत सुख हर सरणी, जलती अग्नि निवारे। गर्भ कुंड नरक ते राखै, पव जल पारे उतारे। चरण कमल आराधित मन में, जम की त्रास बेदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगम अपारे। गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुवै जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दाता रे। कर कृपा अपनो नाम दीजै, नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक। साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल्यो है मूढ़ नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो। सागर लहर संसा संसार, गुरबोइत पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेटत परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक। सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर लै लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है, या गै तिल नहीं मानी है। आहू बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक।

क्या किश करै के करना हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरनी जियो, संता दासी सेवा चरनी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागो पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ ना वंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काट किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिये जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्याग, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठतावै। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो निमखना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहु ना लावे नानक मुक्ता है तुम मानो जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुगता है तुम मानो एह बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा अहन से औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ता को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे कशु उपाओ मुत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छुट्टी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों ला गया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान चतराई नह।

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुदो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पै विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरणगत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नेह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचे शब्द दर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आसन रासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख पेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रवतर पवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे, रहाओ बल राजा।

आप लाए आपे मत देवै, दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलादो धारे कृपा धारी।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

जे सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्या त्यागै कवरे भाई मिलै सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जा रै सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना मिर्ग मरे सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पस्म लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

अद की तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाह वाह जे वाट दिखावै, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावै, तिसको वाह वाह जे मेल मिलावै। वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए। नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया। हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए परम पद पाई।

अंतर साच सहज कर आवै, राजन जान परम गत पावै, सच करनी गुर परम चुकावै, निरपौ कह कर ताड़ी लावै। हां हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे।

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पुले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरि अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफरियो काल कूड़ सिर मारे निश्चल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी शेख पेख फकीरा वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा काल जाल जिहवा अर नैनी कानी काल सुनै बिख बैनी बिन शब्दै मूठै दिन रैनी हृदय साच वसै हर नाए काल न जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोलै साच मिथ्या नहीं राई चालै गुरमुख हुक्म रजाई रह अतीत सच्चे सरनाई सच कर बैसै काल न जो है मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह है रहाओ अपियो पियो अकथ कथ रही है निज कर बैस सहज कर लही है हर रस माते सुख कही है गुरमत चाल निचल नहीं डोलै गुरमत साच सहज हर बोलै पीवै अमृत तत् विरोलै सतगुर दीख्या दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योतिया पार जय देखो तह एक अंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्रह्मणी इन विद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया सासन दुखे परम चुकाया जिनकै मन वसया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम

गुरमत नाम ना विसरै, सहजे पद पाईऐ, अंतर सब निधान है, मिले आप गवाईऐ। नदर करे प्रवे अपनी, गुण अंक समावै, नानक मेल ना चूकई, लाहा सच पावै। गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझले तौ होए नबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द ना छूटिया देखो विचारा, जेला कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिया, बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद नर बहिया। खोटे को खरा कह खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल विडाने। सूते कौ जागत कह जागत कौ सूता, जीवत कौ मुआ कह मुए नहीं रोता। आवत कौ जाता।

चेरी की सेवा करै ठाकर नहीं दिसै, पोखर नीर विरुलिया मखन नहीं रिसै। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीना आप कहो सो अपरिया पारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी गुआरे री महला तीजा, अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उतारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त

गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म तर्म सच सोई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा, इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हाउ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा, सोजन साचा जे हो मैं मारै, गुर कै शब्द पंच संघार, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करै पेख धारी, अंतर तिसना फिरै हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई, माया मोहे अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवै सेवड़ भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रैगुण भरमे नाही निज कर वासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत ना चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारिया।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया, मिल संगती मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन कर हला गुर मन्या, गुरमकार कुमाए, गुर आगे कर जोदड़ी, जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन कर हला विचारिया, विचार देख समाल, बन फिर थके बनवासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल। मन कर हला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन कर हला विचारिया, मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन कर हला मेरे प्यारिया, सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है, हर हर चलै तेरे नाल। मन कर हला वडभागिया, हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, ब्रह्म पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडपागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सोहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जमजोहा, जब इसते सब बिन से परमा, पेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सदगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सालाहनो नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतन निचल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जा जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जा जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न न पोहत, जास जपते काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धार है, पंच जना स्यो संग निवार है। दस इंद्री कर रखै वास, ताकै आत्मै होए परगास। ऐसी दृढ़ता

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया। हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ। बहुत पैहारिया, मैं तकी ओढ़ संताह लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निम्नु लागौ पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक, इकस बलिहारिया। सब गुण किसी ही ना है, हर पूर भंडारिया। चाहो दिस जपिया नाओ सूख सवारिया। मैं आही ओढ़ तुहार, नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार, मोह कु पारिया। मैं जीत्यो जन्म अपार, बहुर ना हारिया। मैं पायो सर्व निदान, अकथ कथारिया। हर दरगह सोभावंत, बहाल उडारिया। जन नानक लद्दा रतन, अमोल्या पारिया। गुर सेवा पौजल तरिया, कहो पुकारिया।

तज हो मैं गुर ज्ञान भयो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग न गयो सगत मूल लगे पचमोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे कने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पाओ खंडन दुख भंजनो भगत वच्छल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुणिया रेकी बेनती देहो दर्श हर रायो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा अरंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंद न जानी हौ संचो हौ खड़ता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रदान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत्या चार कुलीना मन में होए गुमानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध काम रत्या नहीं बिसरानी भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दा दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला मुंद रहन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देखै सिंगार मिठ रस भोग भोजन सब चूटक तै ना लेखै मैं मत जोबन गर्भ गाली दुधा थणी ना आवै नानक सातन मिलै मिलाई बिन पर नींद ना आवै मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाहा बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै सा सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सहु जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा तानो नाम सहि सुमानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौतानो शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो मेरी इच पुन्नी जियो हम कर साजने आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन यो माहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिरतन करे रलिया इच मेरी पुनिया गौड़ी संत महला पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरैगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुरलाए नानक सातन मिलै मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए
फिर छोटी आड़ी जियो कवन मिलावै, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै, शब्दे सुहावै ता पत पावै दीपक देह उजारै। सुन सखी सहेली सा सुहेली साचे के गुण सारै, सतगुर मेली ता प्रिरावी बिकसी अमृत बाणी, नानक सातन ता प्रिरावे जा तिसकै मन पाणी। माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे, क्यों खूलै गल जे वड़ा जियो बिन गुरे अत प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै। पुन दान्या नेक नावन क्यों अंतरमल तोवै, नाम बिना गत कोई न पावै, हठ निग्रह बेबाणै, नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाणै। तेरा नाम सच्चा जियो सब सच्चा विचारो, तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो, तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा गुरपुरे सच पाया। राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, सात अन बिना करे जियो हर के गुण सारे, खिन पल रहना सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रहना सके गुर बिन मैल ना पाईए। जो गुर कह सोई पर की जय तिसना यगन बुझाई है, हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई, बिन सेवे सुख ना पाए, नानक सातन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रहन सोहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए, सतगुर सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए, विचों आप गवाए हर गुण गाए अंदन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ, हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एकलड़ी जियो बिन नहा प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे, बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ विगुती ता प्रमुती सातन मैल ना पाई। गुरशब्दे राती सहजे माती अंदर रहे समाए, नानक कामन सदा रंग राती हर जो आ मिलाए। ता मिलिया हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग ना पाए,

हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए हर का नाम मीठा पिराजियो जा चाख है चित लाए रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए एहे वडाणी चाकरी पिराजियो तन छोड़ परदेस सिधाए दूजे किने सुख ना पायो पिराजियो बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए।

माया बंधनो टिके नाही, खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै, जा गुर शब्दी चित लाए, मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो, शब्द मन नाम वसाए, माया का प्रम अंध पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए, बिन सदगुर पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए, राग गौड़ी संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा मन बैराग भया जियो, क्यों देखा प्रभदाते, मेरे मीत सखा हर जियो, गुरपुरख बिदाते, पुरखो विधाता एक श्री तार, क्यों मिले तुझे ओडीणिया, कर करे सेवा शीश चरणी, मन आस दर्शन मानिया, सास आसना

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सतबुद्ध, गुरुदेव सांत सतबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आद जुगा जो जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपे सोनो आपे सुख आसनो, आपे सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखमो आपे अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूह पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सतपुरख ते पिन ना को सोउ शरण परै जेह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहं को जापत सो साधु।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते उजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साध रज राच तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कत न जाहू जा कही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेखर ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग न हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सी तो समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक कवाया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट नाम आए सलोक किरतक मामन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां।

सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सूफन हो एक ते सगला बिस्तारा नानके आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी पर बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सक ते उकमाहे हां हां करते कर्म रत ता को पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे गणत।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जा सरसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ, एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अरे एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

काहू ध्यान पर भरमत पछता पै, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक। खात खर्चत बिलशित रहे, टूट ना जाहे भंडार, हर हर जपत अनेक जानो, नानक नाहे सुमार। पौड़ी। खखा खूना कश नहीं, ते समर्थ कह पाहे, जो दे ना सो दे रहो, पावे तै तै जाहे। खर्च खजाना नाम तानो, या भगतन की रास, खिमा गरीबी अंध सहज, जपत रह गुणतास। खेले बिकस अंध स्यो, जाको होत कृपालो, सदीव गनीव सुहावने, आराम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना डानते, जाको नदर करी, नानक जो प्रभु भाणिया, पूरी इतना परी। श्लोक। गन मिन देखो मन माहे, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम आरोग। पौड़ी। गगा गोबिंद गुण रबो, सा सा जप नीत, कहां पे सासा देह का, बिलम ना करे उमीत। नह बार